Cosumita, drumada la șoapte, suha sinim, suha duram hașinim.

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 6 जून सन 2026। दोपहर के 12 बजने को है हमारी ये प्रसारण सभा। अब आरंभ होती है।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारी सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आपकी अपनी पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीत। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं ब्रज रतन जी गोदानी की। इन्होंने फरमाइश की है गीत तेरे घर के सामने की। स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है तेरे घर के सामने।
1: एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।

हो तो धूप किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।

दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।

0: छोटे ये भी तुम्हें याद होगा, सुलपक्ष में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

0: करके सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम पूरी करने जा रहे हैं फरमाइश। फरमाइश करता है कविता सेवड़ा, संदीप सेवड़ा, अनूप व साथी ग्राम डीडवाना से। ये सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत फिल्म 1942 लव स्टोरी से। गीत है रिमझिम रिमझिम।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत जिसे हम लेकर आए हैं फिल्म छाया से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और इस गीत के लिए अपनी फरमाइश दी है लाड़ेला से देदू राम जी ने।

हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली फरमाइश भेजी है भीलवाड़ा से प्रकाश जैन, निशा जैन, नीति सिंघल और रामजी सिंघल ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म एतराज का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आपको सुनवाते हैं आपकी अपनी पसंद के भेजे गए फरमाइशी फिल्मी गीत। अपनी फरमाइश भेजने

के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9358536607। एक बार फिर 9358536607। इस नंबर पर आप हमें अपनी फरमाइश व्हाट्सएप कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं जितेंद्र व्यास पोल जी की। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सैयारा का ये गीत, जिसे गाया है फहीम अब्दुल्ला ने।

0: राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे।

0: अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

डोर का ये गीत सलीम सुलेमान के स्वर में। इस गीत की फरमाइश की थी आरती व्यास अजय व्यास जैसलमेर से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम ले रहे हैं प्रियन दुबे, गौरव दुबे और आयुष्मान दुबे की भिलाई से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बरसात का ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू के स्वर में।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली फरमाइश आई है अजमेर से सरोज रंगा की। ये अपने पति ललित मोहन रंगा को सुनवाना चाहती हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म वारिस से।

बिन तेरे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, ये दूर दूर रहना, ये दूर

0: थी मेरे प्यार का भरम। कूद जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम।
1: तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म,
0: तेरी खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम। तेरी खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी ही पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीत। अपनी फरमाइश भेज सकते हैं आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 9358536607। हर शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे तक आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम ले रहे हैं वल्लभी बिस्सा, वैष्णवी बिस्सा, स्वरा बिस्सा की, जैसलमेर से। ये सुनना चाहते हैं ये गीत फिल्म कॉकटेल से।
1: इश्क सिखा मैं तो आई जग सज के, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सज के।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश भेजी है फोर्ट जैसलमेर से कृतिका व्यास और अदिति व्यास ने। ये सुनना चाहते हैं गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। इस गीत में स्वर है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति का।

अभी आपने सुना फिल्म भीगी पलके का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के सुर में। इस गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजी थी राजीव रंगा और दिव्या रंगा ने अजमेर से। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हम ले रहे हैं फरमाइश ब्रजरतन जी गोदानी की जैसलमेर से। ये सुनना चाहते हैं गीत फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार के सुर में।

0: दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, भूल खिलते
1: हैं। इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, हर शनिवार आप सुन सकते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद दोपहर 12 से 1 बजे। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9358536607 इस नंबर पर। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
3: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नालघाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक 1 से 2 सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
2: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम पनिहारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दे।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: बजा।
1: तो गुंजन बहन अच्छा ले आया हूँ बहनों ना पर प्यारी प्यारी बातों सुनवाओ रे वास्ते और जरूरी बातचीत करने रे वास्ते।
0: देखो गर्मी रो मौसम चल रहे तृप्ति बहन और गर्मी में नी मन तो लगे जो को कपड़ो पहरो खूब पई जे।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो ए अपना
1: पहनना तो जरूरी है।
0: देखो वस्त्र तो अपने तन ढकन नो काम करी जे और सभ्य वस्त्र जब पहरोड़ा नी तो पुरुष हो या महिला हो दोनों ही रूप और अपने आप खेल जावे। लेकिन असभ्य वस्त्र मनोगुण लगे कि इतना खिलौड़ा रहे। खैर आप सभ्यता असभ्यता की तरफ को नहीं जाओ आप जाओ आप रहे
1: गर्मी रहे वस्त्रों की तरफ
0: माहौल की तरफ मौसम की तरफ। तो गर्मी में जो भी वस्त्र पहनो ही नहीं तो यहाँ लगे कि चुभ रहे हुए। लेकिन कई बार हल्के कलर का कपड़ा पहनो ही नहीं और थोड़ो सो चिपकोड़ो नहीं वे थोड़ो ढीलो कपड़ो भाई तो वो शरीर न ठंडक दिया करे और सूती कपड़ो जब पहनो नहीं वो तो और ज्यादा ठंडक देवी। तो गर्मी रो मौसम एडो है कि जिके मैं कपड़ों रो चयन बड़ो सोच समझ के करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कुछ कपड़ा ऐडा हुई जिको गहरे कलर आवे या थोड़ो सी जाडो कपड़ो हुए तो वो ना आपको खुद रख दिया करें कि सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सो। लेकिन की है कि बच्चा जो है नी वो अपनी बात ना मने न समझे। कुछ बच्चा तो ऐडा हुई कि वो सिर्फ अपनी कम्फर्टनेस देखिया करे कि मन्ना जो को सूट हो सह वो ही पहरीस भले वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कई बच्चों ने मैं देखिया जो गर्मी में भी पूरी बाहर वस्त्र पहन के रखे।
1: वैसे गर्मी में गुंजन पूरी बाजू का कपड़ा पहनना चाहिए ताकि धूप रोज को प्रभाव है नहीं।
0: हाँ
1: वो सब अधिकतम शरीर न बचाए लग
0: जाए। मैं कह रही थी कि वो ना देखती पहले मना लगतो तो कि गर्मी में कौकर पूरी बाहर भरे लेकिन बाद में मना ये चीज जो अपनों भी उम्र रहे साथ में अनुभव आवे समझ आवे तो मना भी बाद में समझ में आए कि असल में गर्मी में पूरी वायरा कपड़ा ईर वास्ते पहनना चाहिए ताकि आपको धूप की जो हानिकारक किरण है जिसके से आपको खुद रे शरीर ने बचा सको और जो झुलसा वाली गर्मी में आपने जरूरत है अपने शरीर ने बचा रखनी ये गहरे ताप सु तो उए में एक कपड़ा जो है पूरी वायरा एक अच्छो काम इंसुलेशन नो काम करे और आप शरीर ने हुए ताप सु बचाए रखे।
1: जी गर्मियों रे मोए देखो सबसे पहले तो बात करी सूती वस्त्र की। सूती वस्त्र आपनो पहनना चाहिए क्योंकि ए जो सूती धागो है सूती जो वस्त्र में जो थ्रेड उपयोग ली जावे वो गर्मी रे सर्व था उपयुक्त है।
0: क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति अपन दे रही है।
1: जी हाँ
0: वो सूती धागो ये वास्ते वो प्राकृतिक रूप से उपजोड़े तो अपने शरीर नो नुकसानदायक को नहीं और शरीर नो बहुत सुहावतो लगे।
1: और हमें कॉटन में भी सूती में बहुत सारी वेराइटी आई गई है जिके रे मैं कुछ अगर अच्छी क्वालिटी रो सूती कपड़ो वे वो नो वो पतलो से उन बढ़िया धोए के प्रेस करने बाद जो कंपनी बढ़ा से तो धोन रे बाद वो कपड़ो सिकुड़े को नहीं है वेरी गारंटी भी। ठीक है एक थोड़ो से कम महंगो कॉटन है जिनका भी जयपुरी कॉटन वो थोड़ो सी मोटो वे जिको खद्दड़ कह जी वो वे हालांकि गर्मी में अपन वो भी सुवास है लेकिन अपन पेरेंट्स पहले कोरन एक बार धोए ले जाए प्रेस कर ले जाए तो ज्यादा ठीक रहे। और लेकिन तो भी थोड़ो से वे रो किनार और टेढ़े मेढ़े बन रो अगर थे ढंग से नहीं सुखा हुए तो टेढ़ो मेढ़ो बन रही में गुंजाइश रहा करे। ईर बाद कपड़ो चले लीनन लीनन रो कपड़ो थोड़ी सी केयर मंगे लेकिन ए भी गर्मियों में बहुत बढ़िया रहे। और आजकल एक नयो कपड़ो प्रचलन में है जो है लीनन प्लस कॉटन। लीनन जो भी नहीं वो केयर ज्यादा मंगे और थोड़ा सी खड़ो रहा करे। कॉटन वे ये में वैरायटी वे जो मलमल कॉटन है तो बिल्कुल सॉफ्ट वे। ठीक है कोटा डोरिया वे तो वो थोड़ो से में रेशमी तार मिक्स होया करे खड़ो खड़ो ज्यादा रहे। तो लीनन प्लस जो कॉटन वे नी वो में ब्योरा गुण वे हाँ आजकल बाइनरी कपड़ा ज्यादा प्रचलन में है दो कपड़ा मिलाए के मतलब दो थ्रेड मिलाए के तो वो में लीनन रो खड़ोपन भी हो से तो ए को नहीं वे कि थे नीचे पालती मर बैठ गया तो थोड़ी साड़ी या ड्रेस बिल्कुल कोई होगी वो भी को नहीं वे। और कॉटन भी सुविधा जो कम्फर्ट है आराम
0: देखो तृप्ति बहन यूं एक और बात करी सवाल करी तो सु के अपोरी सुनन वाली सखियों जो ग्रामीण परिवेश में रह रही है वो तो अजो तक भी वही रिवाज है जिको वस्त्र धारण करना है मनो वो वही पैर से।
1: जी हाँ
0: हाँ हालांकि आज रे समय में तो वह में भी गर्मी रे लायक अलग आएगी ये कुर्ती कौंसली और सर्दियों रे लायक अलग रहा करे तो वो सखियों पहले लेकिन वो अरे एक और समस्या है कि वो दिन भर घूंघट निकाल के रखना पड़े।
1: जी हाँ
0: और उरी वजह से वो ना जो गर्मी में समस्या हो गई घमोरी आ रही खुजली रही या अत्यधिक पसीने के कारण जो इन्फेक्शन हो जावे अंतर शारीरिक जो जगह है वो जगह मत है भी मनो जो इरिटेशन जगह आप कह सको या जो
1: रैशेस हो जावे
0: हाँ संक्रमण वो जगह भी हो जावे तो उर वास्ते सखियाने वास्ते की उपचार हो सके या वो की आदतों अपनावे जिकेरी वजह से वाना ये तकलीफ ये गर्मी में नहीं हुआ।
1: देखो सबसे पहले तो की है कि आप रे जो प्राइवेट पार्ट्स है पूरी साफ सफाई रो बहुत ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं ने अगर कोई तकलीफ हुई नहीं तो की करे वो बात छुपावे पूरी आदत हुई उन्होंने चुप इतो कराया जाए चुकी है बचपन से कि वो नहीं भी कुंडा पड़े कि कई बात बोलनी है कई बात चुप रहनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना है। नहीं रख पावे कुछ भी कारण हो जावे कदे कदे कपड़ा ना वो छाया में से कोई दे जे अधो वस्त्र और धूप कुल लगा जे तो अगर इन्फेक्शन हो जावे नहीं तो सबसे बढ़िया तो इलाज है तपती धूप में कपड़ा ना डालना अधो वस्त्र ना खास तौर पे क्योंकि ए जो गर्मी है नहीं ऐ कभी नहीं मनक मार गर्मी है तो कीटाणु जिता भी जर्म्स हुई नहीं वो सबनो पूरा पूरा मार देवी। सबसे पहली बात तो है। बीजी बात है अगर थोड़ा दो वस्त्र छाया में सुके तुम्हें जर्म्स पैदा हो से और विकसित हो से ऐडी स्थिति में की क्यों जावे कि कपड़ा तो छाया में सुको दिया लेकिन तावड़े कुछ भी देवन रे बहाने कोई टाइम ते सुकोड़े कपड़ों नो धूप में डाल दो
0: ठीक है। आप वो पापड़ ना तावड़ो हाँ,
1: तावड़े ना कर दीजिए बस
0: पापड़ ना तावड़े जो लगावा या कोई चीज ना तावड़े थोड़ी देर लगावा आधा घंटे वास्ते तो जो 10-15 मिनट आधा
1: घंटा हां जब तिखो तावड़ो वे कपड़ों ना तावड़े में डाल दो ना तो थोनो ए सोचनो के सिरी खो सके नहीं सके तावड़े में डाल दो बस
0: धूप तो एक अपने आप में कीटाणु मुक्त करने का सबसे बढ़िया साधन है। आप अपने जो मुफ्त रो अपना मिल रहे तो वो प्रयोग करके आप
1: हमें समस्या गुंजन मन का तो पैदा हुए जदावे बादल और बरसात रो सीजन ये मौसम है ऋतु में की हो से कपड़ों ना तावड़ा को नहीं लगे क्योंकि तावड़ो खुद ही को नहीं वे हालांकि मरु प्रदेश में आपको बहुत आशीर्वाद आपने प्राप्त है पर कदे कदे हो जावे कि अभी 2-3 दिन में तावड़े को निकले हमें बताओ की करो वो टाइम अधो वस्त्र नो प्रेस करके पछे धारण की जावे
0: गरम प्रेस
1: बिल्कुल प्रेस
0: गरमाट सु वर मोला कीटाणु
1: तो प्रेस गरम ठंडी प्रेस
0: तो मतलब बिल्कुल नहीं हां एज करियो कि गरमाट रे कारण वरा कीटाणु
1: खत्म हो जावे ए तरीको है। हमें कदे थे बाहर जाओ शहर से बाहर गया हमें थोरे कपड़ा थे प्रेस के सुलाओ और एक छोटो सी हैक है ठीक है वो मैं इस्तेमाल की और खुद सोचियो कि तरीको काम कर सके जो स्ट्रेटनर आया करे छोटा छोटा स्ट्रेटनर आया करे बाल स्ट्रेट करने वास्ते थे वो ले जाओ प्लग कोई भी जगह होटल में मिल जावे स्ट्रेटनर नो वे जगह फेर दो तो थे जर्म्स हो तो ना मुक्ति मिल जावे। और भी एक तरीको है वो है कि जब आप सफर में जाजे नहीं तो डिस्पोजेबल अधो वस्त्र भी मिलिया करे तो उन इस्तेमाल करने बाद में अगर तो कोनो रीयूज धोना करना प्रेस करन नहीं है तो वे यूज एंड थ्रो कर दो क्योंकि जब थोड़े शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जावे नहीं तो वो टाइम दवाइयाँ वो सो घड़ियों महंगी आवे और तकलीफ शरीर नो और भी ज्यादा भी और कड़ा भी बाहर जाओ भरपूर कोशिश है करो कि थोनो इंडियन टॉयलेट मिले बाहर जाओ मत है वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो जब तक हो सके बंद कर दो अगर करना है जो पड़े तो उर वास्ते भी कुछ तरीका आया करे कि स्प्रे आया करे जिके नो थे टॉयलेट सीट मत डाल दो 5 सेकेंड में आप काम करे उर बाद भी सीट मत बैठो क्योंकि थोनो को नहीं डा थोसो वाले जो व्यक्ति इस्तेमाल कर गए वो व्यक्ति की कोई बीमारी से ग्रसित है या ना है रोज करण वास्ते स्प्रे को नया करे टेम्परेरी यूज वास्ते है कि स्प्रे करने बाद 5 सेकेंड बाद तुम बैठो ताकि थोड़ी बॉडी कोई भी प्रकार के जर्म्स रहे कीटाणु रहे संपर्क में नहीं आवे। और अलावा आप कने टिश्यू पेपर हमेशा रखो आफ्टर यूरिनेशन आप स्किन नो ड्राई करो और बाद में आप कपड़ों नो धारण करो। बाहर जाओ तो कोशिश करो हमेशा जैसे अज पहरिया काल पहरिया एकदम टाइट स्किन टाइट फिटिंग का कपड़ा को नहीं पहनना और हमेशा थोड़ा लूज कपड़ा पहनना है। अधो वस्त्र कॉटन रहे या वे बेम्बूरा बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेम्बूरा कपड़ा पहनना क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट वे थोड़ी सेकेंड स्किन दाई वे और वो कम्फर्ट लेवल जो को है नी वो बहुत अच्छो वे तो ऐ चीज़ों करते अपना सो और वो बाद में हफ्ते में एक बार फिटक रीरे जल सो आप ना बॉडी नो क्लीन कर लो
0: वाइज के होना चाह रही थी कि फिटकरी जो को है वो एक
1: कीटाणु नाशक
0: प्राकृतिक कीटाणु नाशक है और एंटीसेप्टिक रो
1: काम करे।
0: तो जद भी कदे ए एक सामान्य सी इलाज है जो को अपन जद भी कदे थोड़ी सी भी दिक्कत आवे ने एक पेशाब में जलन होना भी एक सामान्य दिक्कत है
1: बहुत बड़ी दिक्कत है
0: कदे कदे ए भी अपन परेशान कर सके तो वह में फिटकरी सु घोल के पानी सु धोना वह जगह ना साफ करना है एक अपन एंटीसेप्टिक रो काम करे और साथ ही संक्रमण मुक्त भी करे आप परी हुए जगह ना।
1: जी हाँ,
0: तो ए शारीरिक सफाई रा जो तरीका है देसी तरीका
1: बहुत,
0: है
1: बहुत जरूरी है। और वो तो मने गुंजन में कपड़ा थे जो भी पहरो नहीं थे गाड़े आड़ो कपड़ो पहर लो थे तोल रे भावरी कपड़ो लेके ड्रेस बनवाए पहर लो थोरी मर्जी, लेकिन अधो वस्त्र हमेशा अच्छी क्वालिटी का पहनना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही चीज है। एक और चीज अपनी देसी चीज है जिकर भी बात करनी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी।
1: जी,
0: गर्मी रे दिनों में शरीर नो घमोरिया से बचाने वास्ते, खुजली से बचाने वास्ते, कोई भी तरीके रे संक्रमण से बचाने वास्ते मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करना एक सबसे बेहद सस्तो और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग है। जिके सु चमड़ी रो ग्लो तो बधे ही है, साथ ही चमड़ी से संबंधित जितनी भी बीमारी हो वो भी खत्म हो। तो सुबह शाम अगर आप और सखियों गर्मी में दिन भर रसोई में बैठ के काम करे या कोई भी बार झाड़ू रो बुआरी रो काम है उन्होंने, देखो गांव में तो अपने गायों रो भी काम है तो उन्होंने धूप रो भी बराबर स्वाद मिलते रहे और उसी वजह से पसीना पसीना भी हर टाइम होते रहे। तो ऐडे में अगर सुबह शाम दो टाइम थे मुल्तानी मिट्टी रो लेप आपरे शरीर में लगाए दे सोने तो वे सब भी थोना थारे शारीरिक जो को तकलीफ है उनमें चमड़ी से संबंधित काफी निजात मिल से और बहुत हद तक थोड़ो शरीर जो को है वो स्वास्थ्यवर्धक
1: और दमकतो रहे से। पर ये में एक बात ध्यान रखनी भी है, अगर बहना मुंडे मुल्तानी मिट्टी लगावे तो जब थोड़े कहो करना नहीं वेजिकेटम लगाओ, क्योंकि अगर थे बोल सो तो स्किन टाइटनिंग की जगह स्किन में वे में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जावे, ऐब जरूरी है। दूसरी बात, इन उतारनी कॉकर है पहले गीलो टाल गीलो नैपकिन गीलो रुमाल कुछ भी लो या हाथों ना गीला करो और मुंडे में थेपो बिनो
0: सुकोड़ी जगह ना पछी
1: पहले गीली करो पूरे बाद में राउंड राउंड गोल गोल घुमाए घुमाए के बिनो मिटाओ ना। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखनी है, अगर थोड़ी चमड़ी तीन तरह की थोड़ा स्किन वे रूखी त्वचा वे ऑयली वे और मिक्स वे जन सामान्यता है तीन तरह की, अगर एकदम थोड़ी रूखी त्वचा है तो मिल्टा नहीं मुट्टी रे घोड़ ना पानी में मत घोड़ो, वो ना दही में घोड़ो या पछे दूध में जितनी रूखी है अकॉर्डिंग जो को बेटे मौसम में
0: हाँ,
1: तो वो स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो से और ब्राइटनिंग दे से। हमें अगर थोड़ी बहुत ऑयली त्वचा है तो थे वे ना पानी में घोड़ो या पछे सेंसिटिव स्किन है तो गुलाब जल वो डालो, और अगर मिक्स त्वचा है तो सुबह लगावे तो वो ध्यान रखो सिंजारे लगाओ देपारे लगाओ हिसाब से, देपारे में दिन भर त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली और चिपचिपी होड़ी वे तो थे पानी में घोड़ सको, सुबह सुबह थोन लगे मुंडो थोड़ा ठंडो हो जाए तो थे दूध थोड़ो से और पानी मिला के कर सको, तो घोड़ कैमे करो ए आपकी त्वचा रे हिसाब से करो।
0: देखो मुल्तानी मिट्टी में से तो बात करो तो बहुत लंबा लंबा
1: हाँ।
0: तरीका है आपको करने और बहुत बढ़िया बहुत सारा तरीका है, तो ए बात तो करता जाओ सो तो खत्म ही करना है, लेकिन सखियों ना बीच में मनोरंजन कराना
1: जरूरी
0: है, सखियों ना थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर सा गीत री तरफ और सुना सा एक मधुर गीत।

0: गुंजन मैन गीत सुनवाए दियो थोड़े कहे अनुसार, और कोई भी बात आपर कोमरी छूट नहीं जावे, मोरजी बहनों वंचित
1: नहीं
0: रह नहीं जावे। जी तो गुंजन बहन, अक्सर आप पर भारत में देखियो जावे, भारत में देखियो जावे और जैसलमेर में आप पर मरु प्रदेश में देखियो जावे कि महिलाओं डॉक्टर कने वो टाइम जावे जद वो सु घरों को होना बंद हो जावे, है नी। अगर कोई तकलीफ है तो कैसे मत्थो दुखे ही पियो, कमर दुखे ही पी, कंधा दुखे ही पिया, जिकर ना मस रोटी बननी बंद हो जावे नी जब डॉक्टर कने जावे।
1: मतलब क्या होना, मतलब है कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो महिलाओं
0: जोड़ावे को
1: जब पूरी मथे आए पड़े नहीं जाना अस्पताल भुगे
0: डॉक्टर मथे आए भले पड़ जावे उनको, जब तक भी रोटी बनती रहसे नहीं तो कुनी कवे ना वो चेते। और अव्वल बात है कि घराड़ा भी कुनी जीते कि ठीक है काल तो रसोई करी है। तो महिलाओं वास्ते बहुत काम की जानकारी है कि हर 6 महीने बाद वो नो आप रो रूटीन चेकअप कराना चाहिए 40 साल उम्र के बाद अनिवार्य रूप से। तीसरे बाद भी साल में एक दो बार करवाए सको जब भी कुछ कमजोरी लगे, 40 रे बाद तो आप रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए जिके में वो नए ठा पड़ से कि उम्र शरीर में आयरन कैल्शियम विटामिन सही है या कुनी, क्योंकि भारत री लगभग हर चौथी महिला आयरन री कमी से पीड़ित है।
1: बिल्कुल, आयरन और कैल्शियम भी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर महिलाओं में कम पाई जावे क्योंकि वो यहाँ सु बनोरे से पदार्थ और सेवन भी कम करे, आपरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कम है। और अक्सर की देखे जावे कि घर में महिलाओं एक करिया करे कि जो खानो बनियो सबनो पोरस दियो जावे, लेकिन खुदरे वास्ते जो बचियो जो
0: खाओ
1: एक विडंबना है महिलाओं ने वास्ते की वो खुदरो ध्यान नहीं रखे, बाकी सबरो ध्यान रख ले लेकिन खुदरी तरफ थोड़ी सी लापरवाही कर रही और वे लापरवाही रो नतीजो होना कुछ सालों बाद दिखना चालू भी हो जाए।
0: जरूर दिखना चालू भी क्योंकि उम्र जो शरीर है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में काफी ऐड़ा पड़ाव आवे जिके में बहुत ज्यादा बदलाव आवे। सबसे पहलो पड़ाव कोई भी बच्ची के जीवन में आवे जब मेरी महावारी
1: शुरू हुई
0: तो उस टाइम मेरा खूब सारा हार्मोनल चेंजेस हुए। उन्हें जरूरत हुई दाखों री, उन्हें जरूरत हुई किशमिश री, उन्हें जरूरत हुई विटामिन भिगोड़े अंजीर री, उन्हें जरूरत वे रेस्ट करन री, ध्यान रखन री। लेकिन वह की है वो लोग चॉकलेट है पुडिंग है ए खाया, या पछे वो लोग मोबाइल में लगोड़ा रहे, या पछे लोग फास्ट फूड खावे कि पेट दुखी बीजों की कुन पावे या खावे को नहीं खानो।
1: अक्सर हमें तो की हो गई कि पैकेट में जो आने वाली चीजों है उम्र सेवन बच्चियां ज्यादा कर रही है और वो पैकेटरी चीजों खाने की वजह से उन बच्चियों की महावारी भी जो 11-12 के बाद में आने चीजें वो 8-9 तक आई,
0: 11-12 की 14-15 तक पहले आती थी किशोरावस्था की होती थी।
1: 12 तक मनी हो जाए सकी कि 12 तक अगर थोड़ी आ गई तो चलो ठीक है, लेकिन 8-9 में आना एक बहुत बड़ी समस्या है।
0: एक सिंपल सी बात देखो, टीनेज किशोरावस्था में अंग्रेजी में कभी टीनेज कब से शुरू हुए, 13 साल 11-12 है तो अलग बचपन हो जाए, 13 में शुरू हुई 13-14 और कद तक टीनेज रवे 19-20 बदल जावे। तो टीनेज रो मतलब है जे कि 1300 में लक्षण शुरू हुई 14-15 अगर जिके टाइम ए बनी थी टीनेज उवे टाइम तो एज परिदृश्य रहे हो से, धीरे धीरे ए 15 रो 13 होयो चलो ठीक है, 13 रो 10 होयो हमें तो इरो कोई समय रहे ही कुनी। तो इर वास्ते जब तक बच्चों रो शरीर विकसित हुए उस पहले अगर महावारी आए जावी, समझ विकसित वन से पहले महावारी आए जावी तो ये रो मतलब की है आपो रो दिमाग विकसित को नहीं हो पर आपो आपरे शरीर अंदरूनी अंगों नो गलत खान पान सो एक्टिव पहले ही कर दियो। तो चिंता रो विषय तो एक अलग चीज है, हार्मोन बदलाव भी दोबारी बार गर्भावस्था में महिलाओं रा बड़े हार्मोनल बदलाव भी, ठीक है। तो ये पड़ाव मत है खान पान रो विशेष ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि कोई दूसरो जीव थोड़े शरीर रो पूरो रो पूरो पोषण प्राप्त करे। डॉक्टरी भाषा में कहो जावे कि गर्भस्थ शिशु बेहद स्वार्थी होता है, माँ को पोषण मिले या ना मिले वो अपने शरीर के विकास के लिए उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया कि वो आपका सारा पोषण चूस लेगा, ठीक है। दूसरे पड़ाव तीसरो पड़ाव यह है जब वीरो डिलीवरी वे उवे वक्त भी बहुत सारी ब्लड लॉस वगैरह वे तो वो टाइम भी आयरन रो लॉस होया करे हर महीने वे जो अलग है। चौथो बड़ो बदलाव है मेनोपॉज। तो यह सब चीजों जो को हार्मोनल चेंजेस वे ये में अगर आयरन युक्त भोजन महिला डेली शामिल करे वो देखे मौज रोज रे खाने में भाई बिना आयरन कितो मिलियो, अगर उवरो ख्याल रखियो जावे नहीं तो एनेमिक वंशों बहुत महिलाओं बच सके।
1: एक और चीज बताई, इसके अपने आप में आयरन आपको ना मिल सके सिर्फ कुछ छोटी छोटी रसोई रे बदलाव
0: जी।
1: एक तो रसोई में जो भी एल्यूमिनियम रा बर्तन है वो ना बाहर फेंक दो,
0: फेंक दियो जावे,
1: फेंक दियो जावे, और लोहेरी कढ़ाई रो उपयोग कियो जावे हर सब्जी बनाने में।
0: बिल्कुल सही,
1: भले वे रो रंग काला हो या
0: वे
1: भले वे, लेकिन अगर वो लोहेरी कढ़ाई में जो भी बना सोने वो थोड़ा थोड़ी मात्रा में आयरन शरीर में पुगा सी
0: पुगा से,
1: और आयरन की मात्रा जितनी आप शरीर में जरूरत होती तो अपन मिल।

0: पूर्ण आहार है। और महिलाओं वास्ते दिन में 3 टाइम पिए, 2 टाइम पिए, रात में सूती टाइम पिए, जो खुद शरीर भी शुरुआत थोड़ा लगे, दूध जरूर पीने। और आजकल काफी बहना नॉनस्टिक यूज करे, क्यों यूज करे, 200 लोहे कढ़ाई में चिपक जावे, ठीक है ये वास्ते बाप रे। या कैसे कि लोहे बीजे में तेल लगे, नॉनस्टिक में कम तेल लगे, तो कुंजन में और एक
1: तरीको है।
0: सुझाव है जो को काफी बहनों ने को नहीं ठावे, मैंने भी कुछ टाइम पहले ठावड़ी हुई, और नाम वे कास्ट आयरन। ए कास्ट आयरन, आयरन में की वे देखो जो को लोहे रो कढ़ाई है, तुम्हें 100% आयरन को नहीं वे, डिपेंड करी तो कहीं दुकान से ली हुई, उनमें भी मिलावट वे 80% लोहे, 20% कुछ भी डाल दियो, कुछ भी हल्की धातु डाल दी, इस निर्भर वे, ठीक है। कास्ट आयरन में आयरन री मात्रा नॉर्मल आयरन री कढ़ाई सो ज्यादा वे,
1: अच्छा।
0: लगभग 90 से 100 रे बीच में आयरन वे, 95 प्रति भी पहुंच जावे, और कुछ अच्छा ब्रांड 100% आयरन देवे, वो भारी वे। बीजी बात, कास्ट आयरन रो जो डोसे रो तवो है जिके में नॉन स्टिक जड़ो रो जड़ो तवो उतरे, हमें थोड़ा अगर खरोच के खुरपोसू निकाल देसो तो मैं आयरन जासे, तो कास्ट आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन तवो घर में जरूरी है, क्योंकि नॉन स्टिक में जते फेंक सो, जते एल्यूमिनियम ने घर से बाहर उनको नोक सो, बिल्कुल भंगा रहे हो, ठीक है। तो उवे टाइम थिक्की बापर सो, तो उवे टाइम एज कास्ट आयरन की कढ़ाई जिकी में लोहे की मात्रा पूरी वे, अगर थे दिन प्रतिदिन में ये कढ़ाई ये तवा बापर लोनी, तो थोड़े आयरन री कुछ कमी इंच पूरी होनी शुरू हो जासे, और घर परिवार सदस्यों भी थे सेहत देसो।
1: देखो, एक और तृप्तिबंध बात जो बताई नहीं कि नॉन स्टिक चिपके को नहीं ये वास्ते लोग उपयोग करे, तो नहीं चिपकने वास्ते एक और चीज बताई सकियो ना कि आप लोहेर कढ़ाई रो लोहेर तवे रो उपयोग कर सको है। ऐस डोसो बनाओ ना लोहेर तो वो भी काम में आ सके और बराबर रूप से अपो में काम ले सकाए। थोड़ी सी वो में दिमाग लगाए कि काम करना है। एक तो कदे भी लोहेर जो को भी कढ़ाई या बर्तन आप उपयोग में कर रहे हो वो जाडे तूंडे रहे,
0: बिल्कुल
1: थोड़ो
0: तुम्हारा
1: सा
0: भारी है,
1: तुंडो वो भारी वे। और बीजो वो ना नॉन स्टिक करने तरीको है कि आपो भी वो तवे ना और वो कढ़ाई ना नॉन स्टिक कर सको, थोड़ो सो तेल चारों तरफ लगाए के और वो ना फैलाए दो और उरे बाद में उए माथे दो पानी जो छड़को
0: जी
1: और पछे
0: हाँ
1: वो ना कपड़े से पूछ लो, तो ए एक नॉन स्टिक ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से ये में बन जासे और वो तवा अपर वास्ते नॉन स्टिक रोज काम कर से। दूसरी एक और बात बताना चाहिए इसके, देखो दूध पीना सखेर वास्ते जरूरी है लेकिन कुछ बच्चों ना कुछ लुगाया ना रोज दूध भावे को नहीं, और कुछ ना दूध से शिकायत भी वेगी वो ना दूध सो दस्त भी लग जाया करे, दूध सु अपचरी समस्या भी हो सके कहना कहना। तो अगर कोई रोज दूध नहीं पी सके तो वो रो विकल्प है कि वो रोज एक कटोरी डेढ़ कटोरी जितनी दही पी ले।
0: जी
1: दही नहीं पी सके तो वे एक कटोरी डेढ़ कटोरी जितनी दही रो छाछ पतली बनाए के रखे,
0: बिल्कुल
1: दिन में 4 बार वो रो सेवन कर सा। मतलब दूध और दूध से बनोड़े उत्पाद और उपयोग अपना करना है तो अपना कैल्शियम भी पूर्ति हो जा
0: हाँ
1: सके।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी जी
1: एक और अच्छी बात है कि सिर्फ दूध मत है, अगर कोई नहीं निर्भर रहना चाहे तो यह भी बड़ा
0: हाँ,
1: विकल्प है।
0: और ऐ भी कह रहे तकलीफ है कि भाई दूध कुछ बचे, कुछ भी हो सके, देखो सब तरह की बीमारी है तो सब तरह लोग हैं, तो आपकी मेडिकल जांच में थोड़ा चीज देखनी है, अगर आयरन की कमी आवे, नो इफ नो बट नो किंतु नो परंतु, सप्लीमेंट लो, डॉक्टर
1: और
0: जो को देवे वो लेना जरूरी है, और उरे बाद भी डॉक्टर एक पत्तो दियो मैं खाए काम खत्म ना, पच्ची मेडिकल जांच हो से, अगर थोड़ी पूर्ता ही हुई है तो थे विन बंद करो, खुदरा डॉक्टर अपने खुदनों को नहीं बनना।
1: और तृप्ति बहन एक और सखियों ने बतानी चाहिए जो को आप जांच तो नियमित करावता है जरूर डॉक्टरों से, ताकि आप और 12 महीने 6 महीने में एक बार जांच हो जाए तो आपके शरीर का विकार अपन ना ठा पड़ता
0: जी
1: रहे।
0: हाँ
1: एक और चीज है जो को आप घरे बैठे खुद भी जांच सको है, वो चीज है स्तन कैंसर है जांच ली, क्योंकि ए एक अड़ी है गंभीर समस्या हो रही है कि बहुत सारी लेडीज में देखने को मिल रही है समस्या। तो ये री जांच करने नो की तरीको है कि आप अपनो खुद ना ठावर जावे, हर बार तो हर महीने 2 महीने में तो आप जांच भी को नहीं करा सको। तो ये रो एक तरीको है कि आपको जब आटो ओसनो है नहीं तो ऐ सोचो कि अगर जब आपको आटो ओसनो है तो वो बीच में अगर आपको आटे के बीच में एक गेहूं रो दोनों आ जावे तो आप हाथों ना कि तो कुप से छोटो सिख दोनों आप हाथ ना कुप से, ये इस तरीके से अपन आप छाती ना मसल के देखना है वे जो आटो उसने जॉइंट, तो अगर उत के छोटी सी गंठ भी हो से तो आप हाथ ना हो खूब चास है, तो ये तरीके से दबाए दबाए के आप एक

0: खुद ही जांच लो, खुद कर सका हर 15-20 दिन या एक महीने में आप आए चीज करके देखो, तो एक तरीको है खुद री जांच करने जुको कि एक गंभीर समस्या रे रूप में आगे जाएगी सो में आ सके। तो अगर ए आप करता रहसो तो अपोरी अंखिया रे आगे अपोरी खुद री स्थिति दिखाई देती रहसे। बाकी जांच तो अपन रूटीन नहीं करावनी चाहिए क्योंकि खून री जांच और अपने शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल है, अपने कया विटामिन कया कैल्शियम कया आयरन कम ज्यादा है वो तो आपको खून जांच सको, वो तो अपना करावनी ही पड़से। लेकिन महंगी जांच जो आपको को नहीं हर समय करा सको तो वो ना आप ये तरीके से जांच सको।
1: सही है गुंजन मैम, क्योंकि आप रो स्वास्थ्य रो ख्याल रखना स्वार्थपन को नहीं, वो खुदरे प्रति खुदरी सजगता है। और आप रो ध्यान आप लुगायो की सोचे म्याड़े की भी नहीं, ये चीज सु अपना बाहर निकलना पड़ से। और ऐसा सोचने अगर थे खुदरे घर परिवार के साथ लंबो समय बिताओ चाहे और वो ना बिना परेशान किए कि वो थोड़े ना आप रो प्यार सिर्फ थोड़ा दवाई लाए थोड़ा दिखावे या तो डॉक्टर ले जाए आप रो केयर दिखावे, अगर ऐसा सब जीवन को नहीं चाहिए तो आप री समस्त प्रकार की असुविधाओं रो दारो मदार खुदरे कंधों में लो, खुद रो ध्यान खुद रखना शुरू करो।
0: बिल्कुल तृप्ति बहन, तो तृप्ति बहन आपको अच्छी अच्छी जानकारी हासिल करी और सखियों ने दी भी सरी साझा भी करी, और उम्मीद करें कि अगली बार आपको बड़े नई चर्चा और जानकारी के साथ सखियों ने मुखातिब हो सो। अपन आज रहिए कार्यक्रम ना हमें लगा सो विराम क्योंकि
1: समय आपन आगे जाऊं नहीं इजाजत कौन दे तो मन श्रोताओं रो भी कोनी मन आप रो भी कोनी, लेकिन रीत रो राय तो करना पड़ से और अपन वसो सीख लेवनी पड़ से। तो बहनों अस्त्र कार्यक्रम में मोहबेन दो जावनी इजाजत और स्वीकारो प्यार भरा राम राम।

बहनें अभी पणिहारी कार्यक्रम सुन रही थी। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल का सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल।

0: घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में

0: बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत C. रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

0: जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी के तो कटेगी जब रात नहीं।
1: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं SN त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म की फेरे।

तन सुन मेरे मन माटी में मिल जाता, माटी में मिल जाता। रंग बिरंगे फूलों को पूजा में डाल के, काली काली पत्तियों का दीपक उजाल के, राधा चंद सांभा का राख जहाँ चला दे, इस झूठी दुनिया को छोड़।

उसने सब कुछ त्यागा। चक चक पीऊ मैं तो राम रस प्यालियां, श्याम के भजन में बजाऊ मैं तो तालियां। राधा चंद सांभा करास जहां चला दे, झूठी दुनिया को छोड़वा।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
2: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिजवी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

घर के और खाने से वो शोले ले आए, हाँ दिल हमको दे आए, दिल

हाँ, दिल को दिया है।

0: हाय दिल उनको दे आए, दिल उनको दे आए, हाय दिल उनको दे आए।
1: किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

जैसा भी है अब है तुम्हारा, टूटा फूटा दिल ये हमारा। जैसा भी है अब है तुम्हारा, इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

माशाअल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशाअल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के

प्यार भरी ये घटाए राग मिलन के सुनाए आ तुम हाथ है सीधा मेरा साथ है।

प्यार भरी ये कटारे राग मिलन के सुनाए।

0: किया है कोई न भाए पूजा
1: तुमको अपने मन में सजा कर।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।
1: विविध भारती मन चाहे गीत।
0: मन चाहे की
2: मन चाहेगी।

0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी क्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में हर डगर में।

रोज मैं अपने ही प्यार को समझाओ रे, रोज मैं अपने ही रोज मैं अपने ही प्यार को समझाओ, वो नहीं आएगा मान नहीं पाओ, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जल

फिर से मन मेरा आस लिए डोले, प्रीत भरी पानी साथ मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की न खोले।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने और दत्तरेंगी भाटापारा से ये है हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखानी, जुबेदा खातून लखानी, विहान लखानी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद पक्षी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाह। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
0: मन चाहे की
1: मन चाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
0: नहीं,
1: मैं कहता हूँ तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना हो। कोई रहम नहीं, नाचो।
2: इन मुगल शहजादियों से भलाई कैसे हो सकता कि राज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है।
4: हाँ,
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं, ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।

हाँ, ये गुलाब की पंखुड़िया नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कारने
1: का कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, अब की बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कम से न अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म आली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है योर मैजिस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
3: जी, योर मैजिस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पना या आलम पना कहो।
3: आलम पना। हाँ आलम पना।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना हा। यहाँ बचपन से रहे हूँ। तो आलम पना, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं। हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।
1: ठीक है अमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
3: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
3: नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
1: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
3: ओ जयपाना, आप कितने अच्छे हैं, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
3: ओ, ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
4: जी हां जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पड़ सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसरत नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
4: जी हां आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो है ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
4: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब जहांपनाह, अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपाही वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
4: जी हां अली मकाम, इसमें कोई शक नहीं।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
4: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
4: जी आदिकत, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
4: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे इन पदसात अंग्रेजों

0: को मुल्क से निकाल बाहर करें।
1: बेशक आलम पनाह, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
0: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
1: अली कत्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
0: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
0: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले 1 माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां बना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई।
0: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलम बना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता। और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
0: सुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी माफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: ओह सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ 2 थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों की फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलम पना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
1: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर 2 में से 1 घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदसात।
1: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलम पना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलम पना की मर्जी।
1: आलम पना, मैंने तहकीकात कर ली है। अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम है जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुंडो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
4: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो।
5: शुजा, ये क्या है?
1: ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा
4: होगा। तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
4: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपनाह, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हां, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपनाह, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियां ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ये मैं क्या सुन रहा हूं?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आ लीजिए।

0: जयपना, मुझे आपके राया इंग्लिश कंपनी के गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम हो गया, और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा।

0: फर्गु नवाब बनाया है।
1: फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
2: यो मजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
2: जरूर यो मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
2: शुक्रिया यो मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की। आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोज करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है। अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खान किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आले कदर, वो
2: आलम बना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी और यहां पहुंचने ही वाली है। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तू दिल्ली आन पहुंची। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है?

0: मंजूर जरा पता लगाओ।
1: आलम पना, ये आली जाह वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
0: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
1: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
0: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
1: जी, वो नजीबाबाद है।
0: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकीब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मेरे डैडी तो मजदूर है, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए आप, 45 साल के जवान या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है?
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही है, आप कहाँ थे और कहाँ आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते थे क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस गया है, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्हें कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने आठ जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है, थोड़ा कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ। और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब दो महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे वो इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए भी गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम,
1: ओके, बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, हाँ। अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम दो तीन बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीत दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया डांस की लाइन।

0: ये दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब होगा
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना। हाँ। आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं। लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था।

0: तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेकिन क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, तो
1: फिर
0: इसकी वजह
1: आपने
0: से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना,
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा। अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है, तो मैं शायद उसमें बच गया। तो
2: गया वो आएगा।

0: टेरेस अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि मेरा काम हो गया है, तो मेरी डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: की थी,
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन्होंने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प।

0: मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा,
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट में फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिंग है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सबने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: ये एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो होने के लिए,
1: हाँ,
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा है।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख के मेरा बच्चा आगे जाए, वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बात की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
1: खुश हो गए,
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया या फिर तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर में जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा।

मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, और यू नो, तो ये बड़े बड़े ख्याल, मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, नहीं, मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

है जो लगन तुझको छूना है सारा लगन ना ही मुश्किल हो घबराना नहीं मंजिल हो करीब।

0: अरे टेरे, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे, किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ो।
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जिंदगी में उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया,

फजूल था मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।

जो मिल गया उसे को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जो खो गया मैं

0: में फर्क न महसूस हो जाऊं। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: ये गीत तो हमने सुन लिया।
2: हाँ।
1: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
2: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
1: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में थे, आज भी है।
2: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की

बूंद चख ली, फिर मैंने ग्लोब से करते देखा क्या है। तब तो मुझे कोई थी नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो जो लत या लगाम लगाई नहीं।

अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी

0: इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं सोच रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था। उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे है। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
0: मैंने आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की नाच करती है वो वाला डांस
1: सेक्शन, वो वाला। तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
0: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको,
1: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तुमने कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तो पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला आशुतोष जी से मिला और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
0: कहानी है।

0: कहानी है। तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: अलग
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती है, वो तो आप जानते नहीं थे। फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। ही सेज मैं नहीं करना, मैं बोला मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है। ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरामैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा, मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रूट का घर था मलबाइल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती की अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली, गाना ए आर रहमान का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा, अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए, मैंने अनिमिता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा आप मुझे बताइए, ऐसे आप दो दिन के मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाए तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मोचन ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना,
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

और मन में थी जो बात छुपी आई है जवान पर, और दिल में कहीं एक तीर जखा आया है कमान पर।

0: जो तूने छू लिया।
1: तन महका महका रंग दहका दहका मुझे तू गुलाब सी लागे, जो है ये निखार और ये श्रृंगार तो क्यों ना काम न जागे।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग

0: आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।
1: डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर घी कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, डुपर है अपना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। जी हां साथियों, नशा हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या अन्य कोई मादक पदार्थ न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी ये बाधा बनते हैं। नशे की लत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है और इसके कारण व्यक्ति अपराध, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और अनेक दूसरी सामाजिक समस्याएं भी बढ़ने लगती है। साथियों, युवाओं को राष्ट्र का भविष्य कहा जाता है और यदि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ जाए तो देश की प्रगति प्रभावित हो जाती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, कार्यशालाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को समझाया जाता है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों, परिवार और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। हमें खेल, योग, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाकर स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली विकसित करनी चाहिए। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर आज एक संकल्प लेते हैं कि नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें, स्वस्थ युवा, सशक्त भारत। तो साथियों, अभी एक लेते हैं अल्प विराम और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नशे से जो हमारी युवा पीढ़ी को नुकसान हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों, ये केवल एक सरकारी अभियान नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है जिसका उद्देश्य हमारे देश को नशे की बुराइयों से मुक्त बनाना है। साथियों, नशा एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी या फिर अन्य कोई भी मादक पदार्थ देखने में भले ही कुछ समय के लिए आनंद या राहत का अनुभव कराता है, लेकिन वास्तव में ये हमारे शरीर और मन को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। नशे के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वो अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है। नशे का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका पूरा परिवार इसकी पीड़ा झेलता है। कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं क्योंकि उनकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे पे खर्च होने लगता है और इसके कारण परिवारों में तनाव, झगड़े और असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। समाज में अपराध, हिंसा और दुर्घटनाओं जैसी कई समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। साथियों, नशे से हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। कुछ युवा साथियों के दबाव में, तनाव, जिज्ञासा या फैशन के नाम पर नशे की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि ये एक ऐसी राह है जो उन्हें उनके सपनों और लक्ष्यों से दूर ले जाती है। वे अपने युवा साथियों के दबाव में आकर ये शुरू तो कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे वे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं। जो युवा जो कभी देश को आगे ले जाने के सपने देख रहा होता है, कुछ करने की उसमें एक लालसा होती है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की, लेकिन जैसे ही वो नशे की चपेट में आता है धीरे धीरे नशा उसे अपनी ऐसी जकड़ बना लेता है कि वो अपने लक्ष्य, अपने सपनों को भूलकर केवल नशे के अधीन हो जाता है। वे देश का जो विकास है उसमें अपना योगदान बिल्कुल नहीं दे पाते और अपनी जिंदगी तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है और उनका समाज में भी जो इज्जत होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, इसी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इसके माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियों, संगोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रम और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है कि नशा जीवन को बर्बाद करता है, इससे दूर रहना ही समझदारी है। साथियों, यदि हम वास्तव में नशा मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें अपने मित्रों और परिवार के लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो हमें उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। हमें अपने जीवन में खेल, योग, संगीत, पुस्तक पठन या अन्य रचनात्मक गतिविधियों को स्थान देना चाहिए क्योंकि दोस्तों, भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है इसमें बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो उन सब चीज़ों से हटकर नशे की गिरफ्त में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें ये चीज़ समझ में आती है तब तक समय बीत चुका होता है और उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी वो निकल चुकी होती है जिसकी उन्हें हमेशा से आवश्यकता रहती है। इसीलिए साथियों,
आज आवश्यकता है कि हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि न तो हम स्वयं किसी प्रकार का नशा करेंगे और न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने समाज में जागरूकता फैलाएंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे। तो साथियों, ये थी नशे के बारे में हमारी थोड़ी सी अपील। अभी वक्त हो चला है भेंट वार्ता का। तो दोस्तों, अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। भेंट वार्ता ग्राम पंचायत साहडी के सरपंच रामजी भगत से।

है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ब्रिजपाल चरोरा से ये श्री अन्न गीत।
1: अरे मोटे अन्न के अरे भोज बनाओ भाई, प्रथम सुख निरोगी काया।
2: और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुँच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
3: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
2: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गाँव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है। और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्व समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन मेरे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
3: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर आपकी
2: बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग दिए।
3: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया?

0: कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी। आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं। शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से। अब
0: जी
1: मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए। पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया। इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही। तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी का बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए। और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो होते हैं,
0: जी
1: अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का। उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे, अभी वाला बजूपुर से हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: जी,
0: ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल गढ़ा।
0: अच्छा।
1: मैं माइक्रो वाटर शेड में काम किया। माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब की गाँव का पानी को गाँव में ही मतलब की उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है की पानी का पॉपुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब की उसमें कुआ है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वो भी पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था, उस समय हम लोग पहले भी जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाले समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करने कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहां पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कुछ भी प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां हैं, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहां पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए हम जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है।
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका

0: काफी फोकस रहा है इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, क्रीड़ा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रीड़ा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता।
0: यदि प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर कि आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी,
1: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्या है वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
0: अच्छा
1: है। मेरा सोमवार मंगल बुध दिन मेरा 3 दिन लगातार बैठक, रात में घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपकी पंचायत पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरा लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव पे बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उसका लाभ।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है। प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ग्राम पंचायत साढ़ी के सरपंच रामजी भगत से। दोस्तों, अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से ही गीत। आवाज थी अभिजीत और अलका याग्निक की। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। साथियों, अब बात करते हैं यातायात नियमों की। जी हाँ दोस्तों, यातायात के नियमों का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण यातायात का दबाव पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। ऐसे में यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सड़क पर चलते समय लाल, पीली और हरी बत्ती के संकेतों का पालन करना, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, सीट बेल्ट लगाना, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और मोबाइल फोन का उपयोग ना करना जैसे नियम दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी अनेक लोग यातायात के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग जल्दबाजी में लाल बत्ती पार कर जाते हैं तो कुछ बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं तो कुछ लोग नशे की अवस्था में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे लापरवाह व्यवहार के कारण हर साल हजारों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती है। साथियों, यातायात नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाएं कम होती है बल्कि सड़क पर व्यवस्था और अनुशासन भी बना रहता है। इससे समय की बचत होती है, यातायात जाम कम होता है और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो स्वयं नियमों का पालन करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। साथियों, विद्यार्थियों के रूप में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने परिवार और समाज के लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां जैसे सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, सड़क के बाईं ओर चलना और ट्रैफिक संकेतों को समझना बड़े हादसों को रोक सकता है। साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि सड़क पर की गई एक छोटी सी गलती किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसीलिए वाहन चलाते समय धैर्य, सतर्कता और अनुशासन अत्यंत ही आवश्यक है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन, यही हमारा लक्ष्य है। तो साथियों, अभी वक्त हो चला है अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल दिनचर्या का पालन। जी हाँ दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी बाहर तेज धूप, गर्म हवाएं और तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और इस मौसम में अगर हम अपनी दिनचर्या में आवश्यक परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को पैदा कर सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए मौसम के अनुकूल दिनचर्या अपनाना बहुत ही जरूरी है। साथियों गर्मियों में दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, यानी प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए क्योंकि जो सुबह का वातावरण होता है वो अपेक्षाकृत ठंडा और शुद्ध होता है, जिससे व्यायाम, योग और सैर जैसी गतिविधियाँ आसानी से की जा सकती है। सुबह जल्दी उठने से शरीर में दिन भर ताजगी बनी रहती है, दिन भर ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं। साथ ही दोस्तों गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अत्यंत ही आवश्यक है। शरीर में पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण बाहर निकल जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दिन भर नियमित अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या फिर ताजे फलों के रस का सेवन भी हम कर सकते हैं। साथियों आइए अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा से गीत, आवाज थी अलका याग्निक और कुमार शानू की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। साथियों ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस गर्मी के मौसम में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो हमें हर थोड़े थोड़े समय के बाद पानी जरूर पीना है, साथ ही भोजन के बारे में अगर हम बात करें तो भोजन

हमेशा हल्का संतुलित और पौष्टिक आहार ही हमें लेना चाहिए, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, सलाद और दही का सेवन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ज़्यादा तले भुने और मसालेदार भोजन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। साथ ही दोस्तों, दोपहर के समय यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर बाहर जाने से पहले हम छाता, टोपी और सूती कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हल्के रंग के ढीले और सूती वस्त्र शरीर को गर्मी से बचाने में सहायक होते हैं। साथ ही दोस्तों, गर्मी के मौसम में पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है। रात में समय पर सोना और शरीर को पर्याप्त आराम देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी कम हो सके। साथ ही दोस्तों, अगर किसी को चक्कर आता है, अधिक प्यास लगती है या शरीर में कोई कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और जितना हो सके घर पर ही आराम करना चाहिए। तो साथियों, गर्मी का मौसम चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन सही दिनचर्या और सावधानियों को अपनाकर हम स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, आइए हम सभी ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल दिनचर्या अपनाने का संकल्प लें और अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों, अभी वक्त है एक अल्पविराम का और उसके बाद कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं एक ऐसे प्रेरणादायक अभियान की जो पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान दोनों को एक साथ जोड़ता है और इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है और जिस प्रकार माँ हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण करती है उसी प्रकार पेड़ भी हमें जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध वायु फल छाया और प्राकृतिक संतुलन प्रदान करते हैं और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है। साथियों आज पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। लगातार हो रही वृक्षों की कटाई के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान लोगों को ये संदेश देता है कि यदि हम अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं तो एक पेड़ लगाकर प्रकृति की भी सेवा करें। तो साथियों ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे सनम बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुख नरसते होठों की नाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरे पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत है। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गए सुसवर

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अनुराधा और अभिषेक की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के। साथियों इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। दोस्तों हम बात कर रहे थे एक पेड़ माँ के नाम। ये केवल एक अभियान नहीं है बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारी का सुंदर संगम है। यह हमें सिखाता है कि माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा कार्य करना है जिससे समाज और प्रकृति दोनों का कल्याण। तो दोस्तों आइए हम सभी संकल्प लें कि अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा योगदान बन सकता है। तो साथियों आइए आपको फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

0: भाभी को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई।
1: आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को

0: ऐसे बड़े ही भले हैं, ऐसे बड़े ही भले हैं, माना थोड़े मनचले हैं, पर आपके सिवा कहे भी न फिसले हैं।
1: देखो देखो खुद पे जी जी तिराई,
0: भैया और भाभी को बधाई हो बधाई,
2: सब रस्मों से बड़ी है जगनी, दिल से दिल की सगाई।
0: वाह वाह राम जी,
1: अरे वाह वाह राम जी,
0: वाह वाह राम जी।

0: तो तप है किए मंदिरों में किए फिरे, मंदिरों में किए फिरे पूजा सांझ सवेरे, तीन लोटे किस देव को ये रही घेरे।
1: जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई,
0: जीजी और जीजा को बधाई वो बधाई,
1: सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। गीत के बोल लिखे थे रविंद्र रावल ने और संगीत था राम लक्ष्मण का। तो साथियों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाज़त।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे साहित्य भारती। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं समाचार संध्या।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से ही शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत एक बार फिर से हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 8:00 आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर।

किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकते हैं शाम 7 बजे आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15। और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड 89 8 9।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धनवंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। आज ये देखने के लिए मैं आया हूँ, मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का

0: निर्माण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
1: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: बहरोड़ में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
3: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजित करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। इनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
4: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मानसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्यामलाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगला देश के नाम से जाना जाता था। नागौर खीमसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराने के मार्बल के लिए ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहां पहुंचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्याय प्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वयं गणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभाग अध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वयं गणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
6: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता राज जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस अस्पताल रो चकदौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली रही हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर।

0: अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद संग मीटिंग कीनी व दुनिया में चाल रही उथल पुथल विचे भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारे में चर्चा कीनी। मीटिंग में जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण में आसानी लावन सारू विचार करी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी ओपीडी यूनिट रो दौरो कीनो व मरीजाओं अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारे में जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजा सारू भांत भांत री जांचा रा सुबिता जरूरी दवाइयां री उपलब्धता और गर्मी में छाया पानी री व्यवस्था तय करण रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री हड्डी रोग कार्डियोलॉजी वार्ड और न्यूरोलॉजी वार्ड री व्यवस्थावां रे बारे में मरीजों जानकारी लीनी। ई मौके वे कहो के अस्पताल में चोखो काम कियो है पर फेर ही सुधार री गुंजाइश है।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ, मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है कि हम सबका दायित्व है कि हम सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा जो
0: बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो के देश माए 40 लाख बत्ता घर माए सूरज री रोशनी बनी बिजली काम ली जा रही है। शेखावत कहो के खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनी बनी बिजली दूनी तादाद माए काम लेवण आबो हवा ने बचावण सागे बरकत री मिसाल है। केंद्रीय मंत्री कहो के देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवण सागे बिजली पैदा कर रहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया वठे खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो के लारला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बणाईजा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया। वे भाजपा रा प्रदेश दफ्तर में पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी। वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं सागे खास मीटिंग करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो। वे गृह प्रशासनिक सुधार पंचायती राज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो। मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करण रा हुकम दीना। श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो। मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर उदयपुर अलवर और नाथद्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारां रा बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए 8 होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन कचरो भेड़ोकरण गंदी चीजां रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामां री जानकारी दी दीजी। मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार री सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तो बत्तो इस्तेमाल करण बाबत कहो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जचावण सारू अर्जी देवण री आखिरी तारीख आज 6 जून नु बधार 7 जून करती नी है। ये पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।

0: लगातार कोशिश कर रही है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: अलवर सांसद खेल उत्सव रातेत बहरोड़ माए आज समर कैंप स्वरूप हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागर इंद्री सर्वाटकीनी। ए मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूतारो विकास पे है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंपो मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रहते काली स्वास्थ्य रो ध्यान रखने रे बारे माय जाग जगावन सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माय पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माय साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावन वालो खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावन री कोशिशा रा तेत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायत माय खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो के ए पौधा बांटन रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम राज्य में चौमासा पहली रही हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहर में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और कल कई हल्का माए चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजन सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इंग्लैंड और आयरलैंड सागर T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई किया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करी चियो है। वैभव ई साल री आईपीएल होड़ माए सब 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव ने टीम माए शामिल करी चिया है। जापान माए फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच ई सीरीज रा आज शुरू हुआ। 1 लाख टेस्ट मैच माए भारत पहली पारी माए 368 रन बना लेना है। अरवाना 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार मारो साथ दे रहा है। इनु पहली केएल राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारे माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया चावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करण वाली ताकत बताया।

0: राज्य में चौमासाओं पहली रिहल चल रहे कारण घनखरठोणा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी सुनने वाला सगला भाइयों ना विनीता बहन रहा घनाई घना राम राम। तो भाई आज अगर आप बात करो तो माननीय जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो उन्होंने आह्वान मत है 1 जून से लेके 30 जून तक पूरे देश रमोय जो है खेत बचाओ अभियान चलाए हुए है। और ये अभियान ने तहत जो है कृषि वैज्ञानिक, केंद्र और राज्य सरकार जो भी अधिकारी है या जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान जो है वो गांव-गांव जाके किसानों ने संतुलित खाद के बारे में और नकली पेस्टिसाइड की पहचान और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दे रहे हैं। ये अभियान अंतर्गत जो है किसानों ने संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, हरी खाद रो उपयोग, कम वर्षा स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियों, नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान जड़े विषय मथे जागरूक किए जावे। साथ ही खेत रे जो स्तर मथे जो प्रदर्शन और कृषि मॉडल के माध्यम से वैज्ञानिक खेती नो काकर बढ़ावा दियो जावे इस बारे में अपन जानकारी मिले। तो आप सब किसान भाइयों से ये आग्रह है कि ये अभियान से आप जुड़ जे और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार आप खाद रो उपयोग करो और आप जो प्राकृतिक खेती है वही रही और आप अग्रसर हो और आप आगे बढ़ जे। उम्र साथ अगर आप बात करो तो हणा बारो चल रहे है कि हरे चारे रो आप जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको कम निवेश रमो अगर पूरे साल अपन हरो चारो चाहिए तो अपन एडे में हाइब्रिड नेपियर घास जो आप पशुओं रे चारे वास्ते एक बहुत ही अच्छो विकल्प साबित हो सके। पशु पोषण की जो मतलब आवश्यकता है उन्हें पूर्ति करने वास्ते या आप जो पशुओं दुग्ध उत्पादन की जो लागत में कम करने वास्ते हरो चारो जो है वो एक विशेष महत्व रखे। एक अनुमान अनुसार जो है वर्ष 2020 में जो हरो और सूखो चारो है वो उपलब्धता जो मांग है वो क्रमश 64.21 से 24.81% तक कम हुई गई। तो वर्तमान में जो हरे चारे की मांग है और वो आपूर्ति है वो अंत न बांटने वास्ते चारे की उत्पादन लागत न कम कर और वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने वास्ते अपना पारंपरिक चारा और फसलों के साथ जो बहुवर्षीय हरे चारे की खेती करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आप बात करो कि हरे चारे रे मौन जो या नेफियर चारे रे बारे में तो नेफियर घास को बेहतरीन विकल्प है। अगर आप

बात करो तो ज्वार, गर्मियों में जो गवन वाली ज्वार जो है वो सबसे आम और पौष्टिक चारो फसल है। आप बाजरो जो है तेजी से बढ़न वालों और सूखो सहन करने वालों हरो चारो है। मक्कू है वो हरे चारे और साइलेज वास्ते बेहतरीन विकल्प है। बरसीम सर्दी और मुख्य और अत्यधिक प्रोटीन वालों हरो चारो है। लोबिया दलहनी जो चारो है या जो मिट्टी रमोय नाइट्रोजन बढ़ावी और अपनो पौष्टिक होया करे। पैरा घास नेपियर की तरह बहुवर्षीय घास जो पानी वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी होया करे। तो ईर मौसम जो को यहाँ पर बात करके पशु और जो वास्ते नेपियर घास एक बेहतरीन हरो चारो है और अपना नेपियर घास वास्ते जो सबसे अच्छा विकल्प मैं आपने बताया ज्वार है, बाजरो, मक्को है, बरसीम है, लोबिया है, चवड़ा मोटो घास है। ईर सा जो है सब जो है पशुओं और स्वास्थ्य और दूध उत्पादन वास्ते बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होया करे। तो आप ये बारे में और भी चर्चा कर सो, लेकिन आज आप एक सुन जी होगी जो एक भेंट वार्ता प्रगतिशील जो किसान है उम्र वास्ते प्रकाश जी से भेंट वार्ता है सुरेश कुमार जी हर्षरी। तो पहले सुन जी भेंट वार्ता पर चर्चा न रख सापू जारी।

0: पहला तो आपको बात करता हूँ एक प्रगतिशील किसान से। आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप शुभ नाम सा
1: विकास भाटिया।
0: अच्छा प्रकाश जी भाटिया, वैसे आप मूल व्यवसाय की है
1: मिठाई रोपा।
0: मिठाई रोपा में तो आप जो कृषि क्षेत्र है बिना कौकर आप के समय के आप रुचि जागी।
1: रुचि जागी बात ये मैं खेती रो पहले से मौक ने खेत तो
0: जी
1: बहुत मौक भी रो मौर काटे रहा तो बच्चे मैं करी दिन में सरपंच को मतलब बेरो घुमाया।
0: अच्छा ठीक है
1: बेरो घुमाया तो बहुत तार बंदी बेरा बीजा प्राइस पेड़ बीजा लगाया करी था कुछ लियो वो थे सुल्तान ने मैं झील में मुल्को लियो वो मैं तो ना पेड़ लगाया विभिन्न प्रकार की प्रजाति बेरा लगाया। 10 बीघे में किन्नू नारंगी का बाग लगाया
0: बहुत बढ़िया
1: अम्बेरा लगाया जीरा लगाया बहुत और दुनिया भर में दुनिया गुंदेरा लगाया कोई चीज अड़ी को नहीं थी कि मैं प्रयोग सफल भी
0: हुआ सफल हुआ
1: सफल भी हुआ।
0: तो आप एक अगर जो आप बात करिए आप खेती की बात तो बुआई की बात अच्छे करो उसको पहले बागवानी की बात करिए तो कई प्रकार का पौधा लगाया तो ये में जो वो सौ कोई के किलू लगाया हर प्रकार अपर जति में कई पौधों को है ज्यादा मौने
1: किन्नो नारंगी और बहुत ही जोरदार मौने।
0: अच्छा
1: गंगा नगर जो लाल पर नर्सरी सभा की सभा तो पौधा तक की है।
0: अच्छा
1: इतना बढ़िया हुआ है तो दावा नहीं बढ़िया हुआ तो आदूर बगीचे से रंग से नहीं आ रही।
0: अच्छा
1: दावा खराब हो गया जब देखते हैं बाकी खूब अम्बेरा बिजेरा के समुद्र लोग के गोंदोरा तो इतना बढ़िया लगा गोंदोरा गोंदीरा स्थानीय जो आप हो रहे हैं
0: जी
1: गोंदोवन गोंदीरा खूब लगा जोरदार के बस पुतो में और तो काजरी सुधारा तो बहुत अच्छा।
0: अच्छा काजरी कई देश
1: में तो तुम जोध पहुंच।
0: अच्छा तो उन दिनों में ठीक होकर पैसा दिया दिया गया तो
1: ये मुफ्त में दिया हूँ जब मैं कह रहे तू गया था।
0: अच्छा
1: पैसा दिया है कौन काजरी मोर दाम पैसा रखना आ रहा था पैसा दिया है कौन यार खूब पौधा दिया कितिया है वेरा का ना सुना वेरा किया उनको हस्ती आश्चर्य चकित करना है यार वेरा है ना वो मुर में हाल देखो उस तरीके का मोर वैसे कोई सीमा हो।
0: बहुत बहुत बढ़िया आप उदान की में उस समय कई हो तो क्योंकि आज तो देखो तो अपन दुनिया भर का पौधा मिल गया है और सरकार खुद बिल्कुल कम कह ले दर माते दे रही है सब्सिडी नहीं दे रही है तो थोड़ा और दूर कई हो तो थो कै साल में प्रयोग
1: मैं करीब करीब मैं 2002 में सुबह पहले मैं पहले बेरो सगुण को मैं ठीक है उधर बाद में हुए अड़बा लड़के ने जमीन ली 170 बीघा वो में खूब पौधा बीजा लगाया था वो तो 12 वाली जमीन थी उधर बाद नहरी क्षेत्र में मैं गया वो में खूब पौधा लगाया खूब पौधा लगाया तो समझ लो आगे बात वो पेड़ देखी जाए 2500 पेड़ की जगह में लगाया खेजड़ी का पेड़ में 110 नाम में
0: बहुत बढ़िया तो क्या उन्होंने मतलब है कि आज तक तो कितना पौधा लगा दिया उसको
1: नहीं कम से कम 5-6 हजार
0: पौधा आज भी ये थोड़ा भी क्या पौधा अच्छा लगा रहे हैं और समझे जो काफी प्रकृति के द्वारा है कोई थोड़ा जुड़ा हुआ है आज भी थोड़ा एक बागवानी जी थोड़ा लगा रखी है मैंने बताओ कि वो जैसलमेर किसान है वो आज भी आज तक बहुत लारे दे रहे हैं बाहर में आए हुए वो तो ये काफी जो ये मतलब नवाचार कर रहे हैं तो इस वजह किसान लोग काफी क्या हो जाते हैं
1: किसान लोग पौधे हुए रे मार पेड़ लगाना चाहिए गुंदरा पेड़ लगाए तो ऐसा फसल ऐसा भी दे बढ़िया वैरायटी का पौधा लगा वो भी पैसा दे खेतड़ियां लगा देखो पर्यावरण वास्ते बहुत जरूरी है और जैसलमेर वास्ते सिंगरियां देखो 400-500 की किलो बुके शुरुआत में बढ़िया मेहनत कर रहा है पैसे बटे दुनिया
0: में लोकली जो परंपरागत वनस्पति है ये अभी आज 50 की
1: है धरती में खूब उपजाऊ भी बनो
0: बिल्कुल मैं सबसे बहुत मोटी बात करिए कि आज तो समय रही में जितना भी आप कृषि का महकमा है वो भी इसके लिए होगा अपन प्राकृतिक खेती करनी है अपनी जैविक खादी करनी है कहीं रासायनिक प्रयोग नहीं करना है तो अपन परंपरा का जो पौधा है ये जो खाद अपन लेते बीजे में थोड़ा जो खेतों में तैयार किया तो उन जब हम टॉपी की फसलों लेता है पोखर है तो उन्हें लाए होता है
1: फसलों में ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਗੇਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਜਵਾਰ ਬਾਈ, ਮੱਕੀ ਬਾਈ, ਖੂਬ ਫਸਲ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 54 ਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
0: ਅੱਛਾ, 54 ਗਾਂ ਰੱਖੇ।
1: ਉਹ ਗੋਬਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੜਾਇ ਔਰ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਰੈਸਪਾਂਸ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਆਦੇ ਸਮੇਂ ਰਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਪਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
1: ਦੁਗਣਾ ਹੈਣੋ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ 7000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਬਕੇ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਅਰਬੀ ਜੋੜਾ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ।
0: ਅਦੋ ਆ
1: ਹਾਂ ਅਦੋ 7000 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਕਿ ਆਪ 2002 ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀ ਹੋਏ ਔਰ ਆਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਆਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਰਸਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋ ਹਣ ਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਸੁਣੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੀ ਕਠਿਨਾਈ ਪੜਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੁਣਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਤਾਇਓ ਔਰ ਵਿਸਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ
1: ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਭ ਕਠਿਨਾਈ ਤੋਂ ਕਠਿਨਾਈ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਠਿਨਾਈ ਜਿੱਤੇ ਆਪੋ ਕਠਿਨਾਈ ਭੋਗਸਾ ਹੋਤੀ ਸਰਦਾ ਹੋ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਰੇ ਉਸੋ ਤਾਂ ਨੀਮ ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਗਿਓ ਨੀਮ ਰੀ ਜੋ ਕੋ ਪੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕੋ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਸੀ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨੀਮ ਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਦ ਵੀ ਖੂਬ ਆਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਮਤ ਅਰੇ ਫਸਲ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ।
0: ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਆਪੋ ਥੋੜੋ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਮੇਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇ
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਮੇ ਦਿਖਣ ਲਹਿਰੀ ਛਿੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖੁਦ ਤਬਿੱਟ ਬਣਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੀਨ ਦੇ ਲਾੜੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਈ
0: ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਚਾਰ ਕੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
1: ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ
0: ਬਿਲਕੁਲ।

0: उहा के बाता गुड मतलब ऐसे मतलब आप जमीन का बताओ जमीन सुंदर तो उहा जो मतलब फलदार पौधा जंबो है चीजा है पूछा है ये सब लगाओ निकली माती राम के बस पूछो मजे तब बढ़िया आदमी और भेड़ा कदे भी अधी रात रो लो करता था
1: अच्छा ले किया
0: राम के साथ
1: बिल्कुल काजरी हाथ भी आप कॉल कर रहे हैं
0: काजरी बहुत जोरदार काम प्रेरणा दे उनको
1: आप लोगों का जो ध्यान विषय है कि आज के समय रवि ने जो कॉपर खींची है ये उन्नत नस्ल तैयार करी है क्योंकि लोग हर सुबह लोग रखते हैं और हमने तो काजरी आला है केवी के मतलब कृषि विज्ञान केंद्र आला है या बहुत जो अगर लेवनी चाहूँ तो आप उन्हें पहले सूचना का आप उन्हें भेज दीजिए और मेरी जो भूमिका है 10 फुट से ज्यादा तो पोर्टो ला गए बोले तो ये वास्ते आज के समय में किसानों वास्ते जो भी सरकार को आते तो आगे बढ़ रही है मैं किसान लोग को सीख
0: किसान लोग भी आगे बढ़ नहीं जाते और सदुपयोग कर
1: नहीं जाते तो देखो भाई लोग के आज के समय जो है विज्ञान में युग आप जो तरीके बता रहे तो भाई जैविक खाद खुद तैयार करी गाय के तो ये सब वैज्ञानिक तरीका है क्योंकि हमारा पुराना परंपरागत तरीका और मतलब बहुत अलग तरीके से खाद डालता और खाद को है वो जैविक तैयार की गोबर नसड़ाए बनाए बीजे में खुद को कितनी फसल ले जाता तो जब फसल की तो बात कर दी उदाहरण की वजह से तो मोर उगाया तीन उगाया ये सब खाना तो लाभ हो कितना लोग चीजें
0: बहुत तो लाभ तो मतलब की है लोग खूब ले जाओ था मना हुए में आने जाओ तो बेचिया मैं कदे बहुत दिन की ये मतलब बटा बहुत था होता मारे मैं कदे बेचिया जो कोई आवा था जब मतलब खुल छूट दी गई था वो में आने जाओ तो
1: बहुत बढ़िया तो सो कितना लोग प्रेरित हुआ क्योंकि देखो कई चीज कदे कदे की चीज सोच रहा आदमी से खड़ा हुई
0: ये सोच रहा था कि बिल्कुल लोग उन्होंने लाल लाल पौधा लगाया था बोलिया लगाया जब हरी संभाल के लिए वो पते सिस्टम का खूब पेड़ लगाया वो बाप रे मां बोलिया भी लगाया बढ़िया जो एक असो गंदा औषधीय पौधा वो भी मैं अंदर में लगाया
1: अच्छा
0: तो वो भी हरी बीज लगाया तो असो गंदा मेरा फल मतलब बहुत औषधीय मतलब है
1: बिल्कुल बता दी आप किसानों ने साथे साथे आप हर प्रकार हो गए मैंने कौन को दान की रोटी हो आप एक जो देसी मैंने सुन दिया है
0: जिसको भी राम सिंह जी मैंने प्रेरित कियो वो सलाह दी भाई मुंह तो दान का तो मेरे से कहीं रुपा करता वो तो को सलाह दी और अनुसार में कौन किया तो रिजल्ट बहुत ही मतलब बढ़िया है मुझे और बहुत आनंद भी है
1: बहुत बढ़िया है बात आप बता रहे हो और अभी तो भाई सुन रहा है ये पूरे लाभ में से तो आज आपसे बातचीत हुई बहुत बहुत धन्यवाद
2: तो आप पेट वार्ता सुनी आप चर्चा बच्चे और जारी रख सो लेकिन पहले सुन जी राजस्थानी लोग की तो बच्चे चर्चा रख जी जारी

आप सुनियो राजस्थानी लोकगीत। और आप बात थोड़ी देर पहले बात करी थी आप खेत बचाओ अभियान री, तो उरे साथ साथ अगर आप बात करो तो एक और अभियान जो को आप देश में चलाया जा रहे हो वो है नशा मुक्त भारत अभियान। देश में मतलब बात करो तो खासकर युवा जो को पीढ़ी है और बीच जो को है मादक पदार्थ और लत जो को एक गंभीर समस्या बन गई है। इरो प्रभाव केवल नशो करने वाले व्यक्ति तक सीमित को नहीं बल्कि हमारा परिवार समुदाय और पूरा जो को समाज है वो मथे पड़ रहे हुए है। मादक पदार्थ और सेवन ने वृद्धि में जो को है वो कारण आप पर समाज में जो को अपराध में जो को दर है वो में भी वृद्धि हुई है और सामाजिक कल्याण जो को ये मथे भी जो को है व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़े पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो को है दिसंबर 2014 में अपने मन री बात जो को भाषण है वो बात है भी जो को है ये मतलब प्रकाश डाली तो कि मादक पदार्थ और जो को खतरो है वो 3 D लाया करे। पहलो डी जो को है वो है अंधकार, दूसरो डी है जो को है विनाश और तीसरो डी जो को है तबाही। तो सरकार जो को है वर्ष 2014 में खतरे से निपटने वास्ते ठोस प्रयास कर रही है जिके सु मादक पदार्थ सु जो को आपर समाज मुक्त हुए और आपर जो को समाज में एक लक्ष्य प्राप्त करने जो को दिशा और कार्य में जो को है सहयोग री मजबूती मिले। सामाजिक न्याय और जो को अधिकारी मंत्रालय जो को है मादक पदार्थ और मांग में कमी लाने वास्ते नोडल मंत्रालय और आप दायित्व के तहत जो है देश में मादक पदार्थ और दुरुपयोग कम करने वास्ते जो है उपाय शुरू कर दिया है। मादक पदार्थ और मांग में कमी वास्ते जो है राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है और वो लागू भी किए गए है। ये योजना जो को है केंद्र राज्य सरकार तथा गैर सरकारी जो संगठन है उनके सहयोग रे जो प्रयास है मादक पदार्थ और जो मत निर्भर व्यक्ति है उम्र रोकथाम वास्ते जो शिक्षा शिक्षा जो को है या जागरूकता है या पहचान है या परामर्श उपचार पुनर्वास प्रशिक्षण और जो सेवा प्रदाता प्रदाता है उम्र क्षमता मत जो है निर्माण केंद्रित करी पड़ी ताकि जो को है आप पर जो खासकर युवा पीढ़ी है या जो को आप पर देश में जो को भी नशे से युक्त जो अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान है वो जो को सफलता पूर्वक पूरा हो सके और लोगों में जो कोई इस जो को नशे की लत है वो केत न केत कम हो सके। नशा मुक्त अभियान जो को है वो 15 अगस्त 2020 नो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थ और सेवन रे मामले में सबसे अधिक संवेदनशील जो को माना गया 272 जिला था वो से शुरू किया गया तो और 15 अगस्त 2023 ए जो को अभियान है पूरे देश रो जो को है विस्तार से सब जिलों में शुरू कर दियो गयो है। तो ये बात से आपनों ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपनों नशे से दूर रहना और आप और जो भी करने आप और अगर कोई भाई बंधु जो भी है वो अगर ध्यान दे रहे कि कौन नशे में है कौकर कहना नशे की लत है तो वो ना भी अभियान से जोड़ो ताकि आप लत छुड़वा सक जी। और वो साथ जो आप बात करो कि भाई नशा मुक्त भारत जो अभियान है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भी है और वो साथ साथ जो काफी आड़ी आप और जो संस्थाओं भी चलाई जा रही है जिके में जो है आप नशा जो है उन्हें छुड़ावी जो प्रक्रिया चल रही है। तो आपको किसान भाइयों ने भी ध्यान देना है कि आप आस पास के किसान भाई भी काफी अड़ा है जो रोजमर्रा जो दिन भर काम करे थकान आ भी तो केत न केत तंबाकू है बीड़ी है सिगरेट है या कोई तरल पदार्थ जो शराब वगैरह है वो नशे में हो जावे तो अपन ध्यान रखना है आप आस पास पड़ोस में आप किसान भाइयों ने जो अगर अड़ी लत है तो अपन उन्हें छुड़ाने वास्ते खुद भी प्रयास करना साथ में जो संस्थाओं करने करने जो ये आड़ा कार्यक्रम चला रही है जिके सु आप नशा मुक्त हो रहा है तो अपन उन्होंने भी सलाह देनी चाहिए। तो आप चर्चा तो और भी करता लेकिन आप कार्यक्रम वक्त हो गए पूरा तो आप सुले सो सीख और कर सो राम राम।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

真的

आप मुझे अच्छे लगने लगे इस फिल्म के गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास
1: की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open borders.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जंडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और

0: पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडी ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

मेरी इतनी कहानी मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई आए कोई बोले मैंने दिल दिया। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना थोड़ा सा बदल।

गली गली कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी गली गली पर खिला नहीं।

आशा भोसले की गाए फिल्म और प्यार हो गया की इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा

0: संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को बरसाया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक

0: गौरवशाली इतिहास रहा है और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है, न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम सुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लग लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। वह ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी,

0: सच्चिदानंद गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता है, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी तरह, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखने के लिए। उसने कहा यार तुम लिख लेते, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते, मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैंने डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है कौन छापे है क्या करे, तो मैंने लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं लिख देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर भी हुआ करते थे, उनकी बात पूछे तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिख, जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा कर। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम भी छापे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेता रहा मिलने आओ। फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और भी जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया ये कहानी छापे गए हैं। जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और भी कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मुझे एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगे आएंगे वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उज्ज्वलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है मुझे बनती है कि वो समझे आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ के साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसको लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: अंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है, अब कौन से कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने जाने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाती है, औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा

0: कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, जो नहीं चल सकता है, उसको नहीं मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लेना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें। पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में? देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम में उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब एक्टर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपने संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञे और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी, यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की।

0: उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जाना।
0: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, वो जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है।
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेराजी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा

0: रहे आर्काइव थे, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदार थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam.

0: Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashagar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashagar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
1: Rishikesh Gangurde Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai, jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai. Aur yahi unke gayaki ki visheshta hai. Gayan ke saath saath वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।
0: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashagar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशे प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन तीन ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गंगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की धृत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुर्डे विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharwandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शशांक खराल के साथ बैठक के दौरान

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवन के जन संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी मापक प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तालुकते 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long pending railway projects in